मुझे एक बेवफा से प्यार है लगता नहीं दिल, सफर दुश्वार है लगता नहीं दिल। वह जनाब कभी कभी इंसान जिससे ज्यादा जो है ना मोहब्बत करते हैं ना, वही इंसान सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है। दिल बड़ी एक अजीब किस्म की चीज है जी, ये जानते हुए भी कि सामने वाला जो है ना शायद हमारा नहीं, फिर भी जो है ना उसी के नाम पर धड़कता रहता है। बाज मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती लिसनर्स, लेकिन फिर भी दिल उन्हें छोड़ नहीं पाता। इंसान खुद को समझाता रहता है, बुलाने की कोशिश करते हैं, मसरूफ रहने की कोशिश करते हैं, मगर दिल फिर भी जो है ना उसी रास्ते पर जा रहा होता है और उसी रास्ते पर मतलब जो है ना जाकर रुक जाता है जहाँ कभी किसी की याद रह गई होती है। और अगर मैं सच बात बोलूं तो यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बेवफा इंसान से मोहब्बत करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ उम्मीद भी होती है और दर्द भी होता है, वहाँ इंतजार भी होता है और साथ साथ खामोशी भी होती है कि अब सब खत्म जी, अब दिल को समझा लिया, अब यादें कम हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक कोई गाना, कोई लव्स, कोई शाम या कोई जो है ना मौसम दिल को दोबारा उसी इंसान के पास ले जाता है। लगता नहीं दिल, अच्छा ये सिर्फ जो है ना एक जुमला नहीं है जनाब, ये कैफियत है जब इंसान लोगों में बैठकर भी तन्हा महसूस करे ना, जब लंबे सफर में लॉन्ग ड्राइव में या जब सफर लंबा लगने लगे, जब हंसी अधूरी लगे और रातें जो है ना खामोश हो जाएं। सफर दुश्वार तब लगता है जनाब जब इंसान के साथ जो है ना उसका अपना एहसास ना हो, जब दिल किसी को ढूंढ रहा हो और वो शख्स जो है ना कहीं ना मिले। और एक अजीब बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा लिसनर्स, एक बड़ी एक अजीब और गरीब बात है जी, इस तरह की बात है ना कि दिल फिर भी जो है ना उसी बेवफा के लिए दुआ करते हैं, उसकी खुशी मांगते हैं, उसकी मतलब जो है ना याद में खामोश रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत हिसाब नहीं करती जनाब, मोहब्बत बस हो जाती है और जब हो जाए ना तो फिर दिल को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना कोई दुश्वार हो जाता है, इतना कोई दुश्वार हो जाता है कि जो मैं यहाँ भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बात समझ आ गई है या अगली भी चली गई है? हाय क्या कहने जी, क्या बात है। अच्छा आउटिंग के आप लोगों के क्या कोई प्लान है, आप लोगों ने क्या कोई प्लान डिजाइन किए हुए हैं, क्या कोई मतलब जो है ना प्लान आप लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या प्लान है आपके यहाँ, कहीं भी जाना है या नहीं जाना है?

ओके जनाब, यो जल्बिया तो सहर के लीजिए। एक मर तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। कदरमंद दोसिंग संग मंग चल दे जी, तस वोलिच गम देनो खामोश है, तस वोलिच गम देनो दस से गुट गुट आई है। खैर देश खबर आंदा तस बच गम देनो दगा सोच बखो है, या तस गम देनो दगा सोच कौला शे ताहिर जी गम देनो बस उस उर्दू तशो ताहिर गाड़े जी गम देनो उर्दू साइड तशो नोश गम देनो बस मंग बच गम देनो लगा हेर भैया पुख्ताना।

अच्छा जी, मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा लिसन्स कि तुम हफ्तों के सौदे भी अजीब करते हो, ताहिर जरा सा मुस्कुरा लेते हो और दिल खरीद लेते हो। इस बात पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि मैं हद से ज्यादा जो है ना मोहब्बत करता हूँ, और अब उन्हें कौन समझाए कि तुम्हारी एक झलक ही ऐसी है कि दिल खुद बहुत जो है ना तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता है, और तुम्हारी हंसी में ना जाने जो है ना कौन सा जादू है। जब भी मैं मतलब जो है ना सुनता हूँ, दिल के सारे जख्म खामोश हो जाते हैं, और तुम्हारी आंखें वो तो जैसे मोहब्बत की पूरी किताब हो, जिसका हर लफ्ज सिर्फ मेरे नाम से मंसूब हो और मेरा नाम

अच्छा जी, मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा लिसनर्स, तो सच बताओ तो तुम्हारी ये आवाज जो है ना पढ़कर मुझे मतलब एक बात महसूस हुई है कुरुतलैन बलोच, एक बात मुझे महसूस हुई है, सच बताऊं तो तुम्हारी ये बात पढ़कर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई है। लोग अक्सर मोहब्बत को सिर्फ लफ्जों में ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बातों में अंदाज और एहसास से दिल में उतर जाते हैं। शायद इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं मुस्कुराकर दिल खरीद लेता हूं, हालांकि हकीकत यह है कि तुम जैसा एहसास हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर वाकई जो है ना मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैं मोहब्बत से बात करता हूँ, लोगों को खास महसूस करवाता हूँ या किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता हूँ, तो मुझे ये इल्जाम कबूल है, क्योंकि कुछ रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते, वो सिर्फ एहसास, इज्जत और खूबसूरत लफ्जों से या गुफ्तगू से, मतलब जो है ना ये कि गुफ्तगू से खुद ब खुद जो है ना दिल के करीब आ जाते हैं। और तुम्हारी बातों में एक अजीब सा सुकून है, ऐसा लगता है जैसे कोई जो है ना इंसान सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि दिल से बात कर रहे हैं, दिल से महसूस भी करवा रहे हैं। और आज के दौर में जहाँ लोग वाकई मसरूफ हैं, वक्ती तालक रखते हैं, वहाँ किसी का इतनी खूबसूरती से एहसास दिलाना वाकई जो है ना खास बात है जी। वैसे एक बात कहूँ, दिल खरीदने वाले लोग अक्सर खुद बहुत जो है ना ये कि यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा, करना चाहूंगा, दिल खरीदने वाले लोग अक्सर खुद बहुत नर्म होते हैं ना, मतलब ये कि नर्म दिल होते हैं। और शायद तुम भी जो है ना उन लोगों में से हो जो मोहब्बत को सिर्फ समझते नहीं बल्कि जो है ना महसूस भी करते हैं, इसलिए तुम्हारी हर बात सीधा दिल तक पहुंचती है।

ओके लिसनर्स, एक बार तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। ताहिर जमान आप लोगों को वेलकम कहता है। कभी कभी इंसान की जिंदगी जो है ना इस तरह की होती है लिसनर्स के, कभी कभी इंसान किसी की जिंदगी में इतना खामोशी से शामिल हो जाता है कि फिर उसकी आदत बन जाता है। न शोर होता है, न दावे होते हैं, बस बातों बातों में दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और तुम्हारी बातों में भी कुछ ऐसा ही एहसास है जब तुम गुफ्तगू करते हो, या जब भी तुमसे गुफ्तगू होती है तो लगता है जैसे दिन की सारी थकन खत्म हो गई है। कुछ लोग वाकई लफ्जों से ज्यादा सुकून देते हैं, और तुम उन्हीं लोगों में से हो। आजकल ईद का समय है, हर तरफ रौनकें होंगी, लोग अपने प्यारों के साथ हंस रहे होंगे, बाजारों में रोशनी होगी बच्चों के चेहरों पर खुशी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शोर में भी खामोश हो जाते हैं, जो सबके दरमियान होकर भी किसी एक की कमी महसूस करते हैं। शायद इस बार भी उन्हीं लोगों में शामिल हो। शायद इस बार मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूं। और मैं लिसनर्स यहां ये बात करना चाहूंगा कि कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, उन्हें नाम देना आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, उन्हें नाम देना आसान नहीं होता, बस उनकी आदत हो जाती है। इंसान दिन में हजारों लोगों से मिल ले, लेकिन रात को याद सिर्फ एक ही शख्स आता है। तुम्हारी बातें भी अब उन यादों में शामिल हो चुकी हैं जो दिल से अलग नहीं होती। ईद तो हर साल आती है, लेकिन कुछ लोग हर ईद पर ज्यादा याद आते हैं। इस बार शायद मेरी मुस्कुराहटों में वो बात ना हो, क्योंकि कुछ ऐसा साथ सिर्फ साथ होने से मुकम्मल होते हैं। दूरियां इंसान को खामोश तो कर देती हैं, मगर मोहब्बत कम नहीं करती। और मैं अगर सच कहूं, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे बात करके दिल मुतमिन होता है, वरना आजकल तो लोग वक्त गुजारी करते हैं, एहसास नहीं देते। तुम्हारी गुफ्तगू में एक अजीब सी अपनायत है, जैसे कोई इंसान वाकई सुन रहा हो, समझ रहा हो, महसूस कर रहा हो। यही चीज इंसान को खास बनाती है, यही चीज इंसान को खालिस बनाती है। अगर कभी मेरी बातों में मोहब्बत महसूस हुई हो, अगर कहीं मेरी बातों में मोहब्बत महसूस हुई हो, तो उसे गलत मत समझना, क्योंकि कुछ लोग दिल से बात करते हैं, और दिल वाले लोग हर किसी को नहीं मिलते। हो सकता है कि इस ईद में भी मौजूद ना हूं, ना महफलों में, ना तस्वीरों में, ना मुस्कुराहटों में, मगर कुछ लोग जिस्म से दूर होकर भी एहसास के करीब रहते हैं। और ये कि शायद मैं भी उन्हीं में से हूं। बस एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, या जो लोग सच्चे दिल से चाहने लग जाए ना, वो ईदों से नहीं इंसानों से खुश होते हैं। और मैं लिसनर्स यहां ये बात करना चाहूंगा कि

बात मेरी समझ आ रही है या नहीं? मुझे याद रखना या ना याद रखना आपके इख्तियार में है, मगर सच्ची बात यह है कि कुछ लोग याद रखने के लिए नहीं होते, वो बस सिर्फ जो है ना याद बनने के लिए होते हैं। और हाँ, कभी जो उसी अंदाज से बात करता तो बस एक बार आंखें बंद करके सोच लेना, शायद मैं उसी लम्हे कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच में मौजूद हूं। और जब बात हद से आगे निकल जाए तो एक मैसेज कर देना। सो स्वीट लिसनर्स, 0334-44-00976, 0334-44-00976, 0334-44-00976। अरे बगली, रो क्यों रही है? प्लीज अपने आंसू साफ कर लो, प्लीज कोई तो रोक ले।

उज़्मा मैसेज कर दे उज़्मा वही चे कसम से भाई आप आपको बहुत ज्यादा मिस कर आप ना जाए ना बहुत मफा होगा ईद का मजा नहीं आएगा आपके बगैर यार इस तरह है कि मेरा मेरा भी दिल मतलब जाने का नहीं कर रहा लेकिन क्या किया जाए जाना पड़ता है फैमिली है फैमिली को टाइम देना पड़ता है वालदा को टाइम देना पड़ता है ठीक है क्योंकि काफी सारी ईदें ऐसी मेरी मतलब गुजरी हैं कि जो मतलब मैंने घर से बाहर गुजारी हैं सो इस बार आप लोगों को दिल पर मतलब बड़े वाला पत्थर रखना होगा ठीक है ना जरूरत नहीं थी ना मेरी आप लोगों को अब मैं मतलब आप लोगों से जा रहा हूँ और इन टपों में भी मतलब यही बात हो रही है कि पकार दिनों मा उधर न लाड़ मा बात समझ आ गई है कि नहीं यहाँ अच्छा टाइम पे जो चीज मौजूद होती है ना तो हम लोगों को उस चीज की कदर नहीं होती है और जो चीज हमसे चली जाती है तो फिर बाद में जो है ना हम उसका रोना धोना करते रहते हैं उससे मिस करते हैं उसके पीछे जो है ना हम आंसू भी बहाते हैं उसकी कदर जो है ना हमें फिर बाद में जाके आती है और जब मैं मौजूद था तब आप लोगों को मतलब मेरी कदर नहीं थी और ये है कि अब मैं जब जा रहा हूँ तो आप लोग क्यों आंसू बहा रहे हैं हाँ क्यों आंसू बहा रहे हैं उज़्मा मुझे जवाब दें मुझे मतलब जो है ना बात का जवाब दें प्लीज कोई तो रोक ले ताहिर को प्लीज

अच्छा भाई, मुझे एक एक मैसेज करके बताएं कि शायरी जो है ना, पोएट्री किस किस को पसंद है, और कौन मेरा मतलब जो है ना स्लो वाला और मतलब आयशा वाला और खुमारी और ये कि रोमांटिक अंदाज पसंद करते हैं, ताकि हम अपने इस लहजे को बदलें और अपना मतलब जो ये एक्सेंट है, एक्सेंट को थोड़ा नॉर्मल

आयशा हमारे साथ दे रही हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ दिए, पता नहीं कहाँ से हमारे साथ दे रही हैं। इरहा मैसेज कर रहे हुए आवाज बिल्कुल ओके दे जी, शुक्रिया इरहा। देन नेक्स्ट सुख दी जमा हम सलामना वाहला बदरंगा सिंगे प्रोग्राम औरम और नाइस दे, आई एम इरहा जानी फ्रॉम सोबी।

0: फैक्ट राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। ना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए राह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राबता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
3: मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंसर बतावस्ता दहर यू स्कूल कापियानी किताबुना कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड्स हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता होल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पतयास साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कमेटे मार्केट निस्त अमन चौक।

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab okay. Pata yaad satai pa main jangiri road bane the shamansur baba madrasa sara deval pa deval Haider Mumann homeopathic general hospital shamansur sawabai humus pa de number bane kalu ke yo dakhpal bimar da para number wakhlai 0301
2: o mere bakre gaega kya
3: ek main ek tu
4: उठाए अपने बकरे के नाज़ और नखरे वो भी कुर्बान
5: अपना समझो या बेगाना हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है अब शुरू कर दो घास खाना
6: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए
7: इतनी खुशियाँ मुबारक
8: कसाई कसाई आ गया
9: अरे ओ सांबा कितने बकरे हैं
10: बकरा ईद मुबारक
11: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 9394941 आपकी सेहत हमारा अज़्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ
12: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
13: खुश खबरी हागठोल बीमारान चचा हड़ुकी माछी हुई याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिड़चा दखपो औदला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औया गुते बेहरकत शिवी औद चाचे दखपो द कुंडो दन न लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिड़चा खपे औला सुना सुनकी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومان خو پی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13232
0: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
14: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
14: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 94।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

0: फानी लारीसरा हैदर मुम्मंद मेडिकल सेंटर चार सदा मोबाइल नंबर 0330 30 30 704 इलाज हागा चफरक हो। बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश यो नवे नुम औ नवे फार्मूला आया तासु दखपल मगद तेर सरी द खातमे द पारा डेर क्रीमो ने इस्तेमाल कर तेर सरे वृक्षी औ ब्याराशी आया तासु द मख तेर सरो औ दागुनो सासर बेंतहा जदरा दस्ते दे आया तासु स्किन बाने दग मसलिश्ता खुतर उस पूरी तासुर ल इस किस्म क्रीम इस्तेमाल किडी निदी औ द अगे गट वजह तासु स्किन या इंतहाई सेंसिटिव दे इस किस्म क्रीम नशे लगो द दस किस्म ना उम्मीदा जनानो और दिनारीनो दोपारा द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तुर्की इस्तेमाल युवा खास फार्मूला बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश कुमचे खास फार्मूला द तेर सरो द खातमे दोपारा कुमचे डीर खास खातमे दोपारा और कुमचे खास फार्मूला द सेंसिटिव स्किन दोपारा
1: राजी जी राजी राहुलियु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
0: पाकिस्तान के फर्स्ट शुरू
1: नामा ची बखुन के मेहरबान और डीर अजीम जाते सुमरा लिस्नर हम चिदा टाइम जमुंग आवाज उदी दागा टूलो लगाना ढीर जात मनना ढीर जात खुशालो से
0: टाइम दग क्रीम
1: द चार सदी या द सवाबई या द दीसरा द कम इलाको खलक हम चिदा टाइम जमुंग आवाज उदी
0: द ऑर्गेनिक
1: खोगु दस्ता सु टूलो लगाना ढीर जात मनना ढीर जात खुशालो से
0: इंग्रेडिएंट्स ना तैयार शिवी दी और इस किस्म नुकसान तावान नलरी ओले चे दग फार्मूला पैराबीन और सल्फेट फ्री दी देखिए इस किस्म खुशबू अमल शिवी नुकतासो डीर ना उम्मीद शिवी और जुल मोर दिल एतमाद की और द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दग खास फार्मूला को मचे द खास तेर सरो द पारा द दाहुन द पारा और द सेंसिटिव स्किन द पारा तैयार शिविदा
1: राजी जी राजी बिल्कुल खुकूर अगली दस्तासु पर दराना खिदमत की हाजिरी हो इंशाल्लाह पर दग प्रोग्राम की बार लगी ना डीर जाती खबरी कहूँ
0: इन
1: खबरी बाद बेलाडोना पहावाली सरा बहुम कहूँ खबरी बाद अख्तर पहावाली सरा हम कहूँ और दिन लावा चिकम दे खबर बाद मेहरान मोटर कार पहवाली सर हम
0: कहूँ
1: इंशाल्लाह पदा प्रोग्राम की बस हम कोशिश दाई चितासुला अलग ना ढीर जात मालूम तरकू कागद बेलाडोना पहवाली सर यो कागद हैदर मोहम्मद अस्पताल पहवाली सर यो ददेन
0: अलावा
1: मालूम ड्रा पहवाली सर इन इंशाल्लाह जमुन कोशिश दाई पदा प्रोग्राम की तासु सरा अलग ना ढीर जाती खबरी कुजी और पदा प्रोग्राम की ढीर गप शप हम लगू राजे खोगो।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: बेलोडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश तर ला सके समा सहर जुड़वी नोर खोंदवर बेलोडोना गोल्ड विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश तासो हम खपल सहर समा पसान खोंदवर जुड़ गई हागम द बेलोडोना गोल्ड फेस वॉश सरा और टूल और खपल मख द मुख्तलिफ किस्म मुजिर असरातोना बचो साथ
1: बेलोडोना गोल्ड फेस वॉश बेलोडोना

0: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
2: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
3: बकरा ईद मुबारक।
4: दादी रेडियो दिलवर 710 आवाज़।